सुख साखी है। जिन्हों कवि ने कविता दे रूप विच पेश कीता है और इस साखी का सारा पिछोकड़ इको ही है।

नानक गादी बड़ियाई, सगरे जग की बर गुरियाई, सो हम देन उठत इस समय जिसके अगे त्रिलोकी नमे, जिदे अगे सारा त्रिलोक नमस्कार करदा, असी ते ओ गद्दी इनू देन लगे सां। भाव कहण दा साध संगत गुरु हरगोबिंद साहिब दी जपजी साहिब दी सुनाउण बदले चित जोड़ के इतनी प्रसन्नता, पर की किया अब भी धन जन्म भव पयो, जन्म मरण दुख सब मिट गयो, कि अजे भी तेरा जन्म ताने, तेरा जन्म मरण सारा ए भी मिट जाएगा। करो मनोरथ जो अब जैसे, सो लीजो नै बिलमो कैसे। जेड़ा मनोरथ बनाया हुण ए मनोरथ तेरा भी पूरा होएगा। कह कर सो घोड़ा मंगवायो, सुंदर जिस पर जीन सुहायो। आखो सतनाम। ओह घोड़ा सुंदर जीन वाला महाराज जी ने मंगवाया। सूरज प्रकाश दियां पंक्तियां, सवा लाख की कीमत जाही, होए प्रसन्न बख्शत है ताई। प्रसन्न होके ओ घोड़ा बख्शिया है धन गुरु हरगोबिंद जी ने। कवि किवें लिख रहा है, आओ बड़े

ये जो शब्द आप श्रवण कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुक्राने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन इस दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनों दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने सीपा सलार नूं हुकम दिता भई तू कश्मीर नूं जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उस नूं भी शुद्ध दा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नूं लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकित है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया एक शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ

थल कहां गगन के गौन कहां काल के बनाए सब है काल ही चबाए हैं कलगी धर पाछा काल दी गति अगात कथन कर दे हन दशमेश पिता जी आनंदपुर साहिब ते ऊने साहिब दे विचकार जो बंभौर साहब गुरुद्वारा है सतलुज दे ऊपर उथे बैठ के काल दा कौतक वेख के ए बाणी रची आपने की तकिया कि मिर्ग आया है पानी पीन लई ज्यों पानी पीन लगदा तां इसते मुख विच मच्छी फस जांदी है दम रुक गया ऊपर बाज वेख रिया सी उड़ रिया बाज ते वेख रिया के मिर्ग दे मुख विच मच्छी फस गई ते ज्यों इस मच्छी नू चपट मारन लई बाज आया तां ओ भी मिर्ग दे शिंगां विच फस के शरीर छड गया अख फुरत विच ए तीन मौतां वेख के ए काल दा नजारा वेख के साहब कलगीधर पातशाह कहंदे ने जल कहां डूंगे जल विच रहन वाली मच्छी किथे किवें काल ने सद लिया किनारे ते आ जा वही तेरा समा आ गया थल कहां तेज रफ्तार थलां ते दौड़न वाला जमीन ते दौड़न वाला मिर्ग किथे मौत ने बुला लिया उच्चियां आकाशां विच उडारियां मारन वाला बाज किथे मौत ने बुला लिया आ जा भाई ते अख फुरत विच तीन मौतां वेख के धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी कहंदे हन कि जल कहां थल कहां गगन के गौन कहां काल के बनाए सब है काल ही जबाए हैं कबीर जी ने बड़ा सुंदर ख्याल लिखे कि कबीर एक मरण ते दोए मुए दोए मरण तै चार चार मरण ते शै मुए चार पुरख दोए नार कबीर जी कथन करदे हन कि एक हरनी दे मरने ते नाल उसका बच्चा भी मर गया इसलिए दो ओ मर गए दोहां दे मरने नाल दो होर मर गए क्योंकि शिकारी ने जाके शिफ्ट बनी है मिर्ग दी ज्यों निशाना मारिया मिर्गनी नू ता मिर्गनी हरनी भी मर गई ते जेड़ा इसदे बच्चा होन वाला सी क्योंकि गर्भवती सी बच्चा भी मर गया हुण जिथे बैठ के इसने निशाना बनिया सी उथे नेड़े ही छप निकलिया जिसने शिकारी नू दस्या शिकारी नू दस्या ते शिकारी ने झट तलवार कढ के छप दी भी उथे ही मित कर दिता ते आप भी उसे वेले शरीर छड गया ता कबीर जी कहंदे हन दोए मरण ते चार हुण चार हो गए इना चौवा दे मरने ते दो होर मर गए शिकारी दी घर वाली जो गर्भवती सी उसने जदों वेख्या मेरा पति गुजर गया हुण मेरा जीवन त्रिग है ओ भी ओथे ही टकरा मार मार के आप मर गई क्योंकि कबीर जी ए सब कुछ अखी वेख रहे सन ए शे दी गिनती कीती है बाणी दे विच मिर्गनी दा बच्चा शिकारी शर्प अहेड़न ते पेट दा बच्चा ए चारे पुरख हन शिकारी दे घर वाली ते हरनी दे दो ए दो औरतां हो गईयां इस दी साखी इस तरह है कि जिस वेले शिकारी अपने घर विचों निकल के बाहर शिकार खेडन गया ता अगों ही एक गर्भ वाली हरनी मिल गई तिस वेले शिकारी ने खिच के निशाना चलाया उसी वेले हरनी मर गई नाल ही उसका बच्चा मर गया इतने नू जिथे फंदक खड़ोता सी ना उस जगह तो सप निकलिया
ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਝੱਟ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਫੰਦਕ ਦੀ ਔਰਤ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਗਰਭ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਇਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀ ਨਾਲ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਾਲ ਦੀ ਗਤੀ ਅਗਾਧ ਕਥਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਉਪਾਰੇ ਗੜੇ ਫੇਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਮਰੇਂਗੇ।

लगी और न यही महात्म्य अवतारी उजागिर यान कियो तिनके दुख कोटिक दूर गे मथुरा जिन

सुन बेद बिरंत विचार रहो हर जप न छाडो एक करी। मथुरा गण को प्रभ दीन दयाल है संगत श्रेष्ठ।

अधिराधा समय अचानक राजे नु जाग हुई। राजे ने की तके रानी वाला पलंग खाली पे आई साहब आई गुरदास जी लिख दे रानी वाला पलंग खाली है। थोड़ा समा राजे ने उड़ी की थी पर जिस वेले राणी नू राजे ने नहीं तकिया तो भाई साहब जी लिखते हैं राजे दे मन च बड़ी है। अद्धी रात दा समय राणी किधर चली गई। राजा उठिया महल दे अंदर राणी नू लभण लग गए। सारे कमरे वेखे पर राणी दिस ना भी मन विच वरत गई है। तो प्यारी सास संगत राजे दे मन विच राणी दे मतलब चंगे ख्याल भी आउन लगे मंदे भी आउन लगे। राणी दा मेरे नाल प्यार तो बड़ा है पर अधी राती राणी दा महल विचों गैर हाजिर होना ए तो मैनू धोखा दिंदी। इन्हां सोचां ते दलीलां राजा अपने पलंग ते बैठा लेट गया नींद आ गई। दिन चढ़िया जो राजे ने अखां खोलियां की तकिया राणी अपने पलंग ते लेटी हुई। राजे ने आवाज दित्ती राणीए उठ। राणी उठी राजन हुक्म करो। राजे ने पहला सवाल किया राणी ते कि राणी सच दस तू राती किथे गई से। अधी रात तू गैर हाजिर सी किथे गई सी। राणी सोचन लगी जे मैं सच दसदी हां तां जिथे मैं रोज जांदी हां हो सकदा है राजा रुकावट पा दे। तो राणी रोज किथे जांदी सी। आई साहब जी लिखदे साध संगत मिल गाम दे कराती जाए सुने गुरु। रोज सत्संग ही जांदी सी महापुरुषां दी संगत रात नूं जांदी सी। रोज डेली नितनेम बनिया होया सी चाहे मीह होवे चाहे हनेरी कैसा भी वैदर क्यों ना होवे राणी तारा रोज नितनेम नाल जांदी सी। सोचिया जी सच बोलदी तां हो सकदा है राजा सत्संग तों रोक देवे पर मेरे ते प्राणा दा आधार है सत्संग। मेरे जीवन दा निशाना है गुरु दी बाणी। रोटी मिले चाहे ना मिले पर मैं सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता। ए प्यार दी निशानी है ए प्यार है। राणी सोच राजे ने फिर किया राणी बोल तू राते किथे गई सी। जे झूठ बोलदी हां तां पति परमेश्वर स्त्री वास्ते दुनियादारी दा सब तू वड्डा रिश्ता पति जे सच बोलदी हां तां सत्संग तू विछड़दी। पर राणी ने सोचिया मेरा जीवन सत्संग है। जिस तरह मच्छी पानी तो बगैर नहीं रह सकती सत्संगी सत्संग तो बगैर नहीं रह सकता। जिवें जल तू बिना ना मच्छी

तो लिखा रे चंदन गर्वे कहा हाँ ही शीतल अंग तुझते शीतल सौ गुणा संतों का सत्संग। इथे महापुरुष बैठे ओ जगह ते बड़ी ठंड है बड़ा आनंद है। राणी तारा ने सोचिया जे सच बोल दी या उस आनंद तो वांझी रह जावांगी पर मेरा तो जीवन है सत्संग ते जे झूठ बोल दी या तो पति परमेश्वर है दुनियादारी दा रिश्ता है। राजे ने फिर किया राणी बोल दी क्यों नहीं तू राती किथे गई सै। राणी तारा ने सोचिया मना दुनियादारी नालों ते अज भी टुटी ते कल भी टुटी पर मेरी वाहगुरु नालों ना टुटी। जे वाहगुरु नाल बन आएगी तो दुनिया नाल भी बन आएगी। बाबा जी बचन करदे सन एक नू मित्र बना ले सारी दुनिया मित्र बन जाए। जा का मीत साजन है सन।

अनंत सावधा पाठ करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चिया वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंत सावधा पाठ

दो चीजां ने, एक चंगियाई एक बुरियाई। चंगियाईयां कठियां करनियां होन तां कुछ कठिनाइयां दा सामना करना पैंदा है। चंगियाईयां मिलदियां बड़ियां औखियां ने, बुरियाईयां कठियां करनियां होन तुहानूं दूर नहीं जाना पएगा, तुहाडे कदमां दे नाल ही बुरियाईयां हन। चंगियाईयां नूं एकत्र करन वास्ते तुहानूं बहुत सारा जिंदगी दा लंबा सफर करना पएगा। तां बुरियाईयां तां बिल्कुल नाल ने, जदों मर्जी कठियां कर लो। हसूर ने कहना कि बुरे काम को उठ खलोया, नाम की बेला पै पै सोया। ते जिस दे पल्ले चंगियाईयां होण उहदे कोल सिदक आ जांदा है, ते कई वार अकाल पुरख उहदे सिदक दी परख भी करदा है। एक वार रसना पवित्र करो ते आखो प्यार नाल सतनाम श्री वाहिगुरु। ते जिन्ना नहीं आख्या एक वारी फिर आखो प्यार नाल सतनाम श्री। सिदक दी परख है ना। मीरी पीरी दे मालिक साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहब।